सुख भरने वाला, जीवन में सुख भरने वाला, ब्लेस माय लाइफ विद हैप्पीनेस, इच्छा पूरे करने वाला, दिस माय डियर डिवोटीज, इट इज इंडीड अ डिजायर, इट इज अ रिक्वेस्ट ऑफ माइन, हे भगवान।

दीवाने देखे तुमसे बहुत जमाने में, पहले पीछा करते हैं फिर मिलते हैं जेल खाने में।

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्रीदुर्गालक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

घट में जोत है जोत में घट, जो खोजे बाहर वो भीतर ही बसे। ओम शिव गोरक्षा।

0: 102.7 FM, आपका धर्म, आपका स्टेशन, रेडियो जागृति।
1: एक बार बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब लोगों को मैं हार्दिक शुभ स्वागत करता हूं इस रेडियो स्टेशन पर। रेडियो जागृति हमारा धार्मिक स्टेशन पर है। मैं पंडित रुद्रनाथ महाराज हूं और इसके लिए इस पूजा विधि को मैं कहते हैं। आई वुड लाइक टू से वेरी वेरी स्पेशल सीताराम और आदर सीताराम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड वेलकम टू पूजा विधि, द प्रोग्राम दैट इज डिजाइंड टू ब्रिंग इनटू ईच एंड एवरी वन, एवरी इंडिविजुअल्स सनातनिस एंड इवन अदरवाइज इन द वर्ल्ड टूडे। But we as Sanatanist Hindus, we turn in prayer. We ask the Prabhu, the Devis, the Devtas, everyone in the world to please grant us their blessings and more than anything else, their protection. We pray obeisance to Bhagwan Ganapati first and foremost.

देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार और श्री गुरुदेव भगवान की जय। अगेन वी टर्न इन प्रेयर टू द गॉडेस ऑफ म्यूजिक सॉन्ग्स लिटरेचर पोएट्री यू नेम इट शी इज द गॉडेस ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टुडे दैट व्हिच डील्स विद द ब्रेन।

नहीं मंदिर में नहीं मस्जिद में नहीं काशी कैलाश में, नहीं मंदिर में नहीं मस्जिद में नहीं काशी कैलाश में, नहीं मंदिर में नहीं मस्जिद में।

दोस्तों सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,